0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बजे बजे चाकुती रेडियो ये बरी तो भाई मुझे जो रेडियो रे रेडियो मर्चेंग दिले तमु केरी समाचार खल खाई भाव
1: आम जिने गम ये वो जुमले आम ये झेलो जी भिजो
0: इबर थाली बुदे सेवाग्राही मरकरी नेपाली कांग्रेस सर्वे केंद्रीय सदस्य रे लगजुन दकाले आरक्षण कोठर भाई केंद्रीय सदस्य में उम्मीदवार की बरी प्लूले जाना नेता मन्यू
1: के मैं रेडियो मर्चेंग दिले क्याली दिन नई नानर बे 8 बजे खबे तमु के समाचार ये बरी आमलेत ओ

साझालो रेडियो मर्सङदी 95 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङदी .org नाना 8 बजे खबर तमुकी मर्सङदी फेटे रेगा खुसुमाए तमुसोला तेबा म ऐश्वरी क्रज फेटे।

लमजुङ्गरपुर हाइड्रो प्रवर्धकदेव सांसद धर्म केसी महाजरे अन्तर्क्रिया नीतिगत भन्दा व्यावहारिक समस्या झेलदिल प्रदीप प्रवर्धक महिला गुनासो मध्य नेपाली मिसलाई दिए बदेर टुदक्या प्रभावित तब जान मैदे राहत पिमो लमजुङ मनङ्क्या बने भए लागि न्याउलो जिल्ला सांसदमै संयुक्त रूपरी पहल दे लमजुङ प्रहरी वार्षिक कार्य सम्पादन दिएर प्रगति विवरण सार्वजनिक लमजुङ तकिया निर्वाचित तवा प्रतिनिधि सभा सदस्य धर्मराज केसीतेर जिल्लार मुभा विभिन्न जलविद्युत आयोजना प्रवर्धक महिना महाजरी अन्तर्क्रिया तैम प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनाल ऐन संयुक्त अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ ऐन बैठक कचेरी परिचयात्मक अन्तर्क्रिया तलो कार्यक्रम जिल्लारी बनी खाँबा दिएर बनेरी अवस्थरी मुभा जलविद्युत आयोजना प्रमुख दिएर प्रतिनिधि मैजी आयोजना बनी आयोजना प्रगति दिएर समस्याना बारे जानकारी किलो जिल्लर मुभा जलविद्युत आयोजना वे प्रतिनिधि मेजी आयोजना बने भक्रमरी आयोजना निर्वाह लब दायित्व बालोय भोगदिल परिवार चुनौती दिएर समस्या सम्बन्धी सांसद केसित जानकारी लमिलो जलविद्युत आयोजना मेजी आयोजना बने भक्रमरी खबर नीतिगत भन्दा व्यावहारिक रूपरी भोगदिल परिवार समस्या मध्ये थेप समस्या रूपरी प्रस्तुत लालो विशेष लाइमरी आयोजना बने भा आयोजक मैजी सामाजिक उत्तरदायित्व नोरी आफूजी जिम्मेवारी लाई खबा खालेबिनी अनावश्यक माग दिएर समस्या सापेक्ष अवरोधी कठिन तब थेमेला भनाई बोलो छलयौं जलविद्युत आयोजना बनी खाँबा लिसु सरकारी तर्फ त क्या प्रसारण लाइन बनी भा ढिला तब आयोजना जी भावी दिनरे नोक्सानी बिहोर दिल परेवा अवस्थारी थोनिबा आयोजक प्रवर्धक मेला फनाई मुलो जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङजी कृ वर्ष छिनखान लबा केरेर प्रगति नबारेरी सार्वजनिक ललो लमजुङ प्रहरीजी मंगलबार वार्षिक समीक्षा दिएर पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम आयोजना लैमरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय माथातर इलाका त क्या आर्थिक वर्ष 82-83 तब गतिविधि दिएर के न बारेरी जानकारी लमिलो कार्यक्रम जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ गर्व प्रमुख दिएर प्रहरी नायब परीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेजी यावा आर्थिक वर्षरी विशेष लैमरी अपराध अनुसन्धान उजुरी दिएर छानबिन फैसला कार्यान्वयन मुनिमेदेर कोलमय दिएर थेवा मिमेन सेवा केन्द्र लगायतले विभिन्न गतिविधि फेरि कार्य प्रगति नबारे जानकारी लमिलो प्रणव बस्नेजी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम दिएर प्रहरी महिना के बारे जानकारी लमिलो जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङगरी 2082 साउनदेखि 2083 असार मसन्तसम्म अपराध अनुसन्धान तर्फारी विभिन्न प्रकृति भए 188 मुद्दा दर्ता तब रि 106 मुद्दा फर्छोट लै खाँबा बिलो फर्छोट तब बाँकी मुभ 82 मुद्दा माधिरी प्रतिवादी आखुल दिव दिएर मुद्दा मैले प्रतिवादी नै आतपा प्रणव बस्नेजी बी म थिएन अनुसार यब आर्थिक वर्षरी ताई भन्दाले बैंकिङ कसुररी मुद्दा दर्ता तब विषय आत्महत्या सम्बन्धी घटनामै बढ़ी मात्रारी खाबा बी मु लमजुङ प्रहरी कार्यालय खबा विभिन्न उजुरी न फैसला दे बालो समुदाय प्रहरी खाजेदारी कार्यक्रम तकिया विभिन्न समुदाय स्तर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षाका कार्यक्रम ग्रामीण गस्ती रिवा दिएर रिवा गस्ती दिएर चौना गस्ती मेललाई खबा बिमो छनायो यावा आर्थिक वर्षले 9887 सवारी ट्राफिक नियम उल्लंघन लबा तैमरी कार्यवाही समेत लबा बिमो ट्राफिक कार्यवाहीले 87,50,000 रूपियाँ मुइबालोलाई खाँबा प्रणव बस्नेजी बिमो प्रणव बस्ने अनुसार यावा आर्थिक वर्षरी मौलोपटकसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन लैमरी कार्यवाही परिवार पिउलो जानलाई सवारी चालक अनुमति पत्र समेत निलम्बित लमिबा बिमो लमजुङ्गरपुर मध्य नेपाल नगरपालिका चाहिँ मिसालाई दिएर टुइदक्या क्षतितयाबेर जोखिम दि प्रदीप दसजना परिवारमै थिए राहत पिमा निर्णयलाई म विपद जोखिम न्यूनीकरण दिएर व्यवस्थापन समितिला मंगलबार टिपा बैठक अनुसार विपद व्यवस्थापन कोष तक्या कृ परिवार बराबर 50,000 रूपियाँ मुई पिबा तैमु राहत पिबा मध्य नेपाल
राहदियोब मदिरी मध्य नेपाल एकर्ब मुक्तिनाथ घिमिरे तिरी मिसालाई दियामरी तायो क्षति तया बमु चलायो मध्य नेपाल दुर्ब ईश्वरपुरी जगन्नाथ ठाकुर डेरा सानुमाया बिका व्यवसायिक फामरी मिसालाई दियाई मरी क्षति तया मरी राहत पिभा तैमु चलायो टुईद क्या जोखिम दिपरदीब मध्य नेपाल एकर्ब राम बहादुर तमु चिरञ्जीवी घिमिरे ईश्वर घिमिरे चिनु तमु देरा जगत बहादुर घटी देरा मध्य नेपाल नौर्ब तारा राणा फारदेवीनी 50,000 रूपियाँ पिभा तैम नगरपालिका जी विपत्तिया प्रभावित र जोखिम तैखबा परिवार मध्ये राहत उद्धार देरा जोखिम न्यूनीकरण लबै लागि विपद व्यवस्थापन कोष तक्या सुमी पिभा न्यूरायलोई म लमजुगर्ब मध्य नेपाल नगरपालिका जी भाटबेसी रिटुई खाइमा रिटुई दक्या आफै जो वायब बाउदे चमेना परिवार मध्ये राहत पिमा निदायलाई म मंगलबार नगर प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे न अध्यक्षतिर तबा आकस्मिक विपद व्यवस्थापन समिति न बैठक जी वाथियाबा 59 वर्षीय टीका बहादुर बिकादेर थिएन 15 वर्षीय चमे विनिता बिकाएन परिवार मध्ये 1-1 लाख रूपियाँ मुही लैमरी न्यौला जान लैमरी 2 लाख रूपियाँ मुही राहत पिबा तैम बैठक जी घटनारी घाइते तयाबा 50 वर्षीय सुकमाया बिकादेर 16 वर्षीय अस्मिता बिकाइन महिला भइलागे आवश्यक सहयोग लबदे निर्णय समेत लैमो साथै पीड़ित परिवार हैन तत्कालीन आवश्यकता त्यहाँनेरी थिमले खाद्यान्न कोइमय देर आवश्यक सामानमय व्यवस्थापन लागि विपद व्यवस्थापन कोष तक्या तहबै लागि 50,000 रूपियाँ मुई पिबा तैम मर्सिङ फेरि तोखोबे लागि छ गयो फेरि छेउ भन्दा ओइसो खराब फेरि देखे।

0: Extreme energy drink.
1: मुटु छाती एवं श्वास प्रश्वास का बिरामी का लागि खुशी को खबर
2: मुटु रोग का बिरामी अब लमजुंग बाहर जान् पर्दन मुटु को भिडियो जांच अब सेवा मोडल हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में
1: पुरानो मेडिकल कलेज चितवन का वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोज श्रेष्ठ सेवा मोडल हस्पिटल में आउनु हुने हुँदा मुटु श्वास प्रश्वास ब्लड प्रेसर का समस्या भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य जांच गराउनु भई समयमा नै ढुक्क हुनुहोस्। साथै सोही दिन मुटु को भिडियो जांच कार्डियोग्राफी सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै सेवा मोडल हस्पिटल का सम्पूर्ण सेवाहरू पनि सुचारू हुनेछ।
3: जाँच हुने दिन र समय यही साउन 16 गते शनिबार का दिन बिहान 9 बजेबाट।
1: स्थान सेवा मोडल हस्पिटल प्राली सानिमा बैंक अगाडि बेसी सरसाथ लमजुङ। सम्पर्क फोन नम्बर 0665909900, मोबाइल 98477969229।
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ।
5: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: सुन्दर मनमोहक र आकर्षक गरगहनाको लागि विगत चार दशक देखि सेवारत अमृत सुनचाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी सहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी सहर
1: कम्प्युटर तौलमा छापा वाला सुनका गरगहना
0: हार मंगलसूत्र छड्की तिलहरी मिनी तिलहरी औठी सिकरी टप झुमका चुरी टिकिया चन्द्रमा किलिप पंखे चन्द्रमा विभिन्न किसिमका जन्तर लगायतका सम्पूर्ण गरगहना
1: सुनचाँदी खरिद बिक्री र पुराना गरगहना साटफेरका लागि अमृत सुनचाँदी पसल
0: रेडीमेड एवं अर्डर अनुसारका आधुनिक र परम्परागत आकर्षक गरगहना
1: चाँदीका सामान र राशि अनुसारका पत्थरका लागि
0: अमृत सुनचाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी सहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी सहर प्रोप्राइटर रविलाल विश्वकर्मा अमृत विश्वकर्मा फोन 0665201
1: मोबाइल 97460054
0: शुद्धता र विश्वसनीयता हाम्रो प्रतिबद्धता
2: समिच्यों चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता खाई हमरो
3: खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिलवा
4: आंगी समझो लोटरी पर दी हूँ छापता ही गुदी
3: बढ़ दी आप बढ़ दी लोटरी खाले पर दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिल खबर बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
4: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
5: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
6: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को था
7: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: मुटु छाती एवं श्वास प्रश्वास का बिरामी का लागि खुशी को खबर
3: मुटु रोग का बिरामी अब लमजुंग बाहर जानु पर्दैन मुटु को भिडियो जांच अब सेवा मोडल हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड मा
2: पुरानो मेडिकल कलेज चितवन का वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोज श्रेष्ठ सेवा मोडल हस्पिटल मा आउनु हुने हुँदा मुटु श्वास प्रश्वास ब्लड प्रेसर का समस्या भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य जाँच गराउनु भई समयमा नै ढुक्क हुनुहोस्। साथै सोही दिन मुटु को भिडियो जाँच कार्डियोग्राफी सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै सेवा मोडल हस्पिटल का सम्पूर्ण सेवाहरू पनि सुचारू हुनेछ।
4: जाँच हुने दिन र समय यही साउन 16 गते शनिबार का दिन बिहान 9 बजेबाट।
2: स्थान सेवा मोडल हस्पिटल प्राली सानिमा बैंक अगाडि बेसी सरसात लमजुङ। सम्पर्क फोन नम्बर 0665909900 मोबाइल 98477962।
5: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ।
6: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम टेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Hibonia.
1: Extreme energy drink.
2: అమ్మా మా పోర్చుని అయి వాడరికి ఆర్చేసి అవే గోర్చిను.
3: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेस शहरमा यही साउन एक गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ. नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
4: तिमीले पढ्न आउँछ माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा
5: आई लव यू
3: समय मध्याह्न 12 बजे दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी